0: हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज।
1: लौ आयो है क्वालिटीमा नम्बर 1, दाममा सबैभन्दा कम।
2: ओ प्रकाश।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी।